0: दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 702nd एपिसोड में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज पैनल में हमारे साथ देने वाले हैं साहिल। और जब हम लाइव जाएंगे फेसबुक पे तो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं निको हु इज गोइंग टू हेल्प अस विद वीडियोग्राफी। और साथ साथ के आपको ये भी बताते जैसे हर वीडियो में हमारे साथ कोई ना कोई ज्वाइन हो जाता है एज अ गेस्ट एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट लुलू ऑल द वे फ्रॉम चाइना। सो हम उनसे बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट चाइना एज वेल विच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर देखा जाए स्पोर्ट्स की दुनिया में देन दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउ। अभी एक गेम जो चल रहा है बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज, तो हमारे साथ है साहिल एंड ही माइट वांट टू टेल अस क्या हो रहा है। और अभी सेवंस भी चल रहा है जिसमें फिजी हैड वन ऑल द पूल गेम्स, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट वन डिडंट वर्क आउट दैट वेल फॉर फिजी। और भी काफ़ी जो गेम्स चल रहा है देखते हैं कि साहिल के पास कितने समाचार हमारे हमें बताने के लिए बिफोर वी गो हेड विद आवर इंटरव्यू।
1: जी हाँ, एंड क्रुसेडर्स एंड ब्लूज लाइव अभी चल रहा है। Starting May within first 8 minutes, Blues scored a try, so it was 7-0, and Abhi it's 14-7. Crusaders winning.
0: जितना
1: भी इवेंट्स स्टेडियम में हुआ है एवरी इवेंट हैज सोल्ड आउट विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स।
0: Yeah, and it's it's quite good as well.
1: You know what was a surprising bit? I think next month, I think on